ये हक्यांग या मुला औरे हक्यांग आइनं थोसा उसुरबानु निंगवा कबक्पा बैंकिंग रलाबो खोकुम मुक्तिनाथ विकास बैंक रे तेंसा आप लोगों चोगुवा मुक्तिनाथ विकास बैंक तेंसा बैंक ओमें बैंक तेंसा ओ केट मापूं